0: भरे खाना पालो सोनी आतार नहीं ना वही आजू निवाने बच्चीजी तारे मुई पिवा मिमामी मार्वलरी प्रिवा बीरा देसी सर मोबा गंगा आव गैलरी भी या वो मैं आजू
1: मैं याम बीरा तैयार तड़ी बा तारे नासर बाजार लंबी मु मेडल कप ट्रॉफी प्रमाण पत्र बैनर को बनेल पर दी बीरा या वो मैं लो खारे तारे प्रिय याना से दी
0: सो गंगा आर गैलरी भी तो बने बरा आजू
1: करमी मार्बल और फ्रीवा साइन बोर्ड होर्डिंग बोर्ड लाइट बोर्ड मैं बनीम रो फोटो प्रिंट टी शर्ट प्रिंट स्टिकर कटिम लम रो साल असी ब्याज दे माया चिलो बनेम रो
0: पहिले भनेको मैले सबै बुझ्यो कान्छा गंगा आर्ट में के पाइन्छ भनेर एकपटक पहिले सबै भन्दियो त नेपाली भाषामै
2: बेसीसार नगरपालिका साथ पुरानो बैंक चौक में रहेको गंगा आर्ट गैलरी फ्लेक्स प्रिंट में मार्बल आर्ट फ्लेक्स प्रिंट साइन बोर्ड होर्डिंग बोर्ड लाइट बोर्ड बैनर फोटो प्रिंट स्टिकर कटिंग कप प्रिंट ब्याज प्रिंट टी शर्ट प्रिंट गरिनुका साथै मायाको चिन्ह प्रमाण पत्र मेडल र ट्रफी पनि बनाइन्छ साथै हामी कहाँ ललित कलामा अध्ययन गरेका दक्ष व्यक्तिबाट भित्ते लेखन आकर्षक पेन्टिङहरू बनाइनुका साथै बिक्री वितरण गरिन्छ
3: पवित्र गंगा आर्ट ग्यालरी एन्ड फ्लेक्स प्रिन्ट बेसी सहर नगरपालिका साथ पुरानो बैंक चोक लमथुङ प्रोप्राइटर विनिता देवकोटा र गंगा हिमाली घिमिरे सम्पर्क फोन नम्बर 0665531387 मोबाइल नम्बर 9842646648 र 9843001883
4: कहिले टाउको दुख्ने कहिले पेट दुख्ने के दुख्या हो दुख्या हो झन् यही बेला पखाला लागेर हैरान होइन कहाँ जाने होला के गर्ने के नगर्ने जहिल्यै बिरामी भएर केही मेलो मेसी भइदिनु
5: बुवा चिर नगर्नुहोस् झट्टै सुभाष मेडिको फर्मामा गइहालम यही बेसी सहरको सेरा चोकदेखि कारागार जाने बाटो छ नि त्यही काम बरु
4: हुन्छ बुहारी लौ गइहालम साह्रै गाह्रो भयो
5: सुभाष मेडिको फर्मा बेसी सहर नगरपालिका आठ सेरा
2: यहाँ अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै उचित परामर्श दिइन्छ सबै खाले औषधिमा विशेष छुटको व्यवस्था छ प्रोपाइटर सुभाष

0: संयोजक देव विक्रम गुरुङ, सम्पर्क 9849694197। जिताकोट गोल्डन फ्यूचर युवा क्लब अध्यक्ष रामकृष्ण भुजेल, सम्पर्क नम्बर 9856603880। संयोजक देव विक्रम गुरुङ, सम्पर्क 9849694197।
1: सचित पढ्दैन।